अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपाकर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: Roll camera and action!
1: आदि वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं।
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन। बाल की शूटिंग हमारे बगैर।
4: Fairy boy,

दोनों में ताकत भी आई, जो ताकत भी आई तो जुरात भी आई, मोहम्मद जो आए तो रहमत भी आई, जो रहमत भी आई तो दौलत भी आई, जो दौलत भी आई तो बरकत भी आई, जो बरकत भी आई।

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया, कि जिसके सर पर आप

भगवान की बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालैनी मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी

घरों को साफ करो, काबे का तवाफ करो, चलो चलो हज का महीना आ गया, चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: जाएगी तुम्हारे चले जाने से।
1: गरीब अमीरों की महफिल की रौनक नहीं, हमेशा तमाशा बना है।
0: ठहरो अनिल, लौट आओ हमारे मेहमान बनकर, हम बुला रहे हैं, आओ ना। थैंक्स, हम आपसे कुछ मांगे तो इनकार तो नहीं करोगे?
1: जी नहीं।
0: फ्रेंड्स, आज की शाम और खुशगवार हो जाए इसलिए हमने अनिल साहब से एक वादा लिया है कि वो हम सबको एक गाना सुनाएंगे।
1: सर मुझे तो एक ही गीत आता है और वो गम का गीत इस खुशी की महफिल में कैसे गा सकता हूँ?
2: वो खुशी क्या है अनिल जिसमें गम शामिल ना हो? ना गम, सिंह।